0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई, Eventim Apollo, Hammersmith। Hamare Ram।
4: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
3: Exclusive radio partner Laika Radio.
5: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
6: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
7: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
5: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
6: Thanks. Playtime's over. Lovely.
8: Feel the fun. Play Ojo.
9: 18 plus gamble aware.
10: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

दे थांदे फकीरे माँ फकीरे सूट पहन कर कैसा तू दे भांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अपने दुम में

गया मेरा वो सब जाहिल बन गया साला में तो साहब बन गया साला में तो साहब बन

0: रोज बना है मेरा गंगू तेली।
1: क्या गंगू तेली?
0: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला जो का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला मैं तो

0: लायका गोल्ड।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
5: Four beers, please, garçon!
4: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
6: Mum, I'm outside.
7: Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
11: कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: है लाइका गोल्ड।
1: सेवन स्टेशंस, वन पॉडकास्ट, वन मोबाइल ऐप। Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
2: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ, सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

नाजो की गपाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजर वाली वो गोरी गोरी गोरी वो गोरी हाथ के पाली जो जहां के वाली मिल जाए तो फिर वक्त मिल जाए तो फिर एक चाची चाली।

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआइए। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कहे ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाइयां चार गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे, सुनिए सिद्ध।

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

वाजिब तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहण जाई।

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए धर्म

0: Visit cashbackremortgages.co.uk.
1: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
2: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
3: No more worries for me or you.
4: Southall Travel, at all protected.
5: Be part of a historic grand opening.
6: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
5: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
6: Departure 5th of September. Call now on 0203 773 633.
5: Mantra Holidays. What's your travel mantra? The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
6: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
5: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
6: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
8: सीटीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर. इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई. इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम.
9: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट्स.
8: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर रेडियो.
10: फ्रॉम सीनिक ब्रेक्स in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
11: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
12: Well, she is talking about Jaimin Food potato chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
11: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
13: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
14: Uncle sa me pehla thi aawaz chho.
15: Aawaz etle keva?
13: Dharma Productions presents जिंदगी वंस मोर.
15: मारो बाप बनवा की कोशिश करे तू बुद्धि बेचिया वैसे तू. अरे जिंदगी ये भी मौज थी जीवजे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे.
13: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
15: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर.
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Breakfast with Deep Rancher.

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
1: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
0: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainers Lane, Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
1: Tariq Halal, Rainers Lane. There is only one.
2: Bole, tu kya kar raha hai
3: re? Are guru, aapke show ki ticket dhoond raha hoon.
4: Ye to batao, koi pata chala?
5: गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
6: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
8: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
9: Another huge giveaway is coming. Laika Radio Network. Deep Raja, waking you up every weekend.

0: southbanksenter.co.uk
1: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Laika रेडियो नेटवर्क।
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Laika गोल्ड रेडियो Laika रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Laika रेडियो मिडलैंड्स पर।
3: Breakfast with Deep Rancher.

0: नौकरी अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन आपका क्या होगा बताइए, क्या होगा? अरे अच्छा ही होगा, लाइका सुनने वालों का अच्छा ही होगा, और बाकी तो मुझे पता नहीं। एटलीस्ट ये 3 घंटे तो आपके अच्छे ही बीतेंगे, क्योंकि आज भी हमेशा की तरह आपके लिए एक नहीं दो नहीं ढेर सारे गाने लेकर ऋतु शर्मा हाजिर है द ऋतु शर्मा शो में, आपके मनपसंद रेडियो पर, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहाँ भी हमारे साथ ही हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और मुझे आशा है कि कल का दिन आपने बहुत ही अच्छी तरह से बिताया होगा, और चाहूँगी कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा बीते। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं। आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, क्या बात है। बस इस साथ को यूं ही कंटिन्यू रखिए, हम भी अपनी बातों का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दें कि आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.2 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. लेकिन इस जून के एंड से पहले आप कुछ फायदा भी उठा सकते हैं, आपको मौका मिल रहा है कुछ जीतने का, यानी कि अगर आप 75 pound का वाउचर जीतना चाहते हैं, वो आपको मिल सकता है जब आप 1000 pounds से ज्यादा ट्रांसफर करवाते हैं, एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आज फीफा वर्ल्ड कप में जो मैच है, वो पहला मैच है जर्मनी और ये किसके बीच में है, एक तो नेदरलैंड्स और जापान के बीच में है मैच, तो मैं आपको बताऊंगी कि दूसरा मैच की टीम कौन सी है। एंड अगर आपको एक और चीज़ याद दिला दें कि आप 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं रैकलो सॉलिसिटर से, जो कि हमारे स्पॉन्सर्स हैं, और उनको आप जब मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
4: This is Leica Gold.
5: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler.
6: To the right a bit, mate. Yep, yeah, back a bit. Bit more. Oh, no, too far.
5: We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.

0: Set Co Food Containers Total Satisfaction.
1: Two businesses,
2: same town,
1: same service.
2: One appears on page one of Google,
1: the other doesn't.
2: Guess which one gets the customer?
1: The truth is brutal.
2: The first page of Google gets the business.
1: Everyone else gets what's left.
2: So here's the real question.
1: When your customers search for what you sell, do they find you?
2: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
1: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra.
7: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram.
8: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
7: Exclusive radio partner Like Our Radio.
9: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
10: This is huge.
9: Thadik Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
10: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
9: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
10: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
9: Thadik Halal, Rainer's Lane. There is only
11: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। आज ही एक्शन ले 02089072444।
12: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पण बधु ऑलराइट छे।
13: मैं छेने बैक टू बैक त्रण मूवीज जोई लीधी।
12: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी कियोस विथ वीरज गिलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
13: बेतर कलाकमल पाछो आवी जशे ने पछी बधु ऑलराइट थई जशे।
12: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियास इंस्टाग्राम हैंडल।
14: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे।
15: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
16: Four beers, please, garçon!
15: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
17: Location, location, location.
18: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
17: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
18: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
17: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
18: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
17: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
18: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
17: High appreciation.
18: In Dubai.
7: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa, and likeagold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
19: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आशा भोसले और रफ़ी साहब की आवाज़ों में था ये गाना। फिल्म का नाम घराना, जो राजेंद्र कुमार और आशा पारिक की फिल्म थी। और इस फिल्म में म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर रवि को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। और इस गीत को आप सब ने पसंद किया है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आप सबको बता दूं कि मैं हूं रितु शर्मा और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो, जो है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहां भी साथी हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं, तो चलिए डाल ली जाए एक नज़र आपके उन मैसेजेस पर।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: तो हमारे पास सबसे पहले मैसेज भिजवाया है हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर, रेगुलर लिसनर विजय गुडूरी जी आपने। और आज भी बहुत ही अच्छी और सच्ची बात आपने शेयर की है। और आपने लिखा है कि प्रेम वो दीपक है जो दिलों को रोशन करता है, सच्चाई वो धागा है जो रिश्तों को मजबूत करता है, और विश्वास वो नींव है जिस पर हर रिश्ता टिकता है। चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे खास हो, चाहे दूर का हो, अगर आपके बीच में विश्वास नहीं है ना, तो जानिए कि आपकी दोस्ती बेमानी है। तो चलिए इसी अच्छी सी बात के साथ आगे बढ़ जाते हैं। और नरेंद्र बागिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैसेज भिजवाने के लिए। आप हमारा साथ दे रहे हैं और आप भी हमेशा कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। और आज आपने भी लिखा है कि हर एक ख्वाब मुकम्मल हो ज़रूरी तो नहीं, मोहब्बत में सभी खुश हों ज़रूरी तो नहीं, बस एक एहसास ही काफ़ी है जीने के लिए, हर एक रिश्ते का कोई नाम हो ज़रूरी तो नहीं। क्या बात है नरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये मैसेज, थैंक यू, स्वागत है आपका भी। वियाना से अनिल सोनी जी हमारे साथ हैं। संध्या भाव सर, क्या बात है, शो को एंजॉय कर रही है, कह रही है पहले दोनों गाने सुनकर मज़ा आ गया, चलिए साथ देते रहिए और मज़ा आएगा। महेंद्र बाजारिया जी स्वागत है, अर्जुन जी स्वागत है, ज्योति गोल्डन वाला हमारा साथ दे रही हैं, हैरो में संतोष जी हैं, रोशनी जी गीत पसंद कर रही हैं, थैंक यू। तोची पनेसर जी, राजकुमार जी आज आप बहुत दिनों बाद आए हैं, आज बहुत दिनों बाद आपकी अटेंडेंस लगी है, कहाँ एब्सेंट थे, मतलब कहाँ थे, स्वागत है आपका। हरीश खत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद, हिमांशु पटेल जी थैंक यू। और आज आपने एक डेडिकेशन भेजी है, ज़रूर इसे अनाउंस करूँगी थोड़ी देर बाद। मालती जी हमारे साथ जुड़ी हैं, विजय घुनुवा जी हैं, सुरजीत जी हैं, आंटी जी, दिनेश पोपट, प्रज्ञा सहर, रानी जी, महेंद्र पटेल जी क्रॉइडन से, एंड हमारे राजेश जी, आपका भी मैसेज है और आपने लिखा है कि आपको एक बहुत ही खुशहाल और उज्जवल रविवार की शुभकामनाएं। और आपने भी लिखा है कि जिस पर हम सब कार्रवाई कर सकते हैं, खुशियाँ संयोग से नहीं बल्कि चुनाव से मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है, आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको वो क्या काम करना है जो आपको खुशी दे। सो थैंक यू आपके मैसेज के लिए। राजीव पटेल जी, प्रीति जी, मिस्टर शेख फारूक मोहम्मद जी, भरत गंगाराम, वंदना गुटका कहती हैं कॉफ़ी विद रितु, अरे वाह, ये तो आपने मेरे शो का नया नाम रख दिया, थैंक यू। एंड ऑफकोर्स हमारी जासू जी। चलिए मैसेजेस के सिलसिला और मैसेजेस का नामों का सिलसिला बहुत लंबा है, जिसे आगे बढ़ाएंगे बाद में, लेकिन फिलहाल ये अगला गाना डेडिकेट करते हैं मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: यस उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाजों में ये गाना गोविंदा और करिश्मा कपूर पर पिक्चराइज। और आजकल तो करिश्मा कपूर छाई हुई है IBD में, यानी कि इंडियाज बेस्ट डांसर, जो नया शो शुरू हुआ है उसमें करिश्मा कपूर कमाल की लग रही हैं और वो शो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। क्या डांसर्स हैं और मुझे उनको देखने में बहुत मज़ा आता है। तो इस बार का एपिसोड, कल का तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मुझे इंतज़ार रहता है कि जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड आए और आज मैं ये काम करने वाली हूँ, उसे जाकर देख कर निपटाने वाली हूँ। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
0: तो आपको बता दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क एक बार फिर से मिला है तारीख हलाल के साथ, क्योंकि उनकी नई ब्रांच खुलने वाली है रेनर्स लेन में, जिसका एड्रेस है 297 रेनर्स लेन, पिनर HA5 5EJ, और ये खुलने वाली है वेंसडे 17 जून को। और उन्होंने कहा है कि फर्स्ट 100 कस्टमर्स जो कि वहां पर आएंगे उन्हें मौका मिल सकता है क्लेम करने का एक गोल्डन टिकट ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। और अगर आप एक पाउंड स्पेंड करते हैं तो आपको मिल सकता है 50 पाउंड वर्थ फूड आइटम्स। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और याद रखिए, लाइक और रेडियो वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Leica Gold.
0: तो भाई, अगर हॉलीडे जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये की नाम याद रखिए, साउथ ओल ट्रैवल। विजिट कीजिए साउथ ओल ट्रैवल पर या फिर उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410। और टिकट्स के साथ साथ आप होटल्स भी बुक कर सकते हैं, यानी कि हॉलीडे डील्स हैं जिसमें फ्लाइट्स होटल्स सभी कुछ इंक्लूडेड है, एट ऑल प्रोटेक्टेड। 40 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीता है।
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: It's Righty here, and I'm already loving this glorious summer of football. And while the players know they need to fuel themselves properly for the big games, we need to eat well too. Now, M&S, one of the official partners of our amazing home nations football teams, have created Eat Well. Loads of snacks, meals and drinks that help us all be that little bit healthier. And not only that, it's mega easy to spot. Because every pack has a little flower that tells us all we need to know. And because it's M&S, it is, of course, delicious. So, just follow the flower.
3: This is Ritu Sharma.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
7: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
8: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
7: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
8: Call 0208-706-0915 for a free, no-obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
7: Cashback Remortgages. The broker that gives you back.
9: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or over.
10: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
11: Uncle tame pehla thi aavaz chho.
12: Aava etle keva.
10: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
12: Maro baap banvani koshish kare tu. बुद्धि बेची है वैसे तू? अरे जिंदगी ये भी मौज थी जीवजे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे।
10: Our Father's Day, feel the emotions, love and family moments with Zindagi Once More in cinemas on 19 June. For more information, visit Bakrania Media on Instagram.
12: तो थे जाए, जिंदगी once more.
13: है।
14: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
15: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
14: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
15: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
14: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
15: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
14: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
17: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
18: Be part of a historic grand opening.
19: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
18: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
19: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
18: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
20: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
21: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
20: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
22: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
23: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
24: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
22: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
23: Thanks. Playtime's over. Mmm. Lovely.
25: Feel the fun. Play Ojo.
26: 18 plus, gamble aware.
3: Like a radio network. Proud hospitality partner, Ragasan.
27: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
28: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Yavo only on Laika Gold.

0: आशा जी की आवाज में ये गाना हम डेडिकेट करते हैं हिमांशु पटेल जी के भाई मुकुंद पटेल जी को, जिनकी की 70th बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है, और सारा परिवार मुकुंद जी को ढेर सारी विशेष देना चाहता है जन्मदिन की। और हम यही कहेंगे कि आपको भी हैप्पी बर्थडे, और आपकी अच्छी सेहत रहे, आप हमेशा हमें सुनते रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और परिवार का प्यार और साथ हमेशा आपके साथ बना रहे। तो हिमांशु पटेल जी के भाई मुकुंद पटेल जी, आपको ढेरों ढेरों बधाइयां बर्थडे। एंड इसके अलावा उषा जी ने भी कहा है कि उनके ग्रैंडसन है कन्हैया, क्या प्यारा नाम है, 13 साल के हैं, और नाना नानी की ओर से, और बॉबी मामा अन्या और मारिया की ओर से कन्हैया को 13वें बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो उषा जी, जन्मदिन धूमधाम से मनाइए। और यहाँ तो हम क्लासिक गीत चलाते हैं, तो चलिए अगला गीत कन्हैया के नाम पर करते हैं। और आप में से जितने भी साथी जन्मदिन मना रहे हैं, सभी को हमारी ओर से ढेरों बधाइयाँ जन्मदिन की, एंड हैप्पी बर्थडे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आपको बता दें कि 1 pound आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए, एंड 164 बांग्लादेशी टका।
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold rate is 101.17 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Like a gold. Non-stop classics. Classics. Like a gold. This is the Leica Radio Network across London.

0: दीजिए रफी साहब की आवाज में दो बैक टू बैक गीतों के साथ प्रोग्राम का सेकेंड आवर शुरू हो गया है और इस आवर में आप सुनते हैं जोड़ी नंबर वन। आपको इंतजार है कि आज की जोड़ी कौन सी है, तो आज की हमारी जोड़ी है एक बड़ी ही मशहूर जोड़ी जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया है और हम सबके बहुत फेवरेट वाली हैं। उसमें नाम है सबसे पहले अनिल कपूर का और साथ में है ब्यूटीफुल श्रीदेवी। तो आज अनिल कपूर और श्रीदेवी हैं हमारे जोड़ी नंबर वन और इनकी तो बहुत सारी फिल्में हैं लेकिन उनमें से दो गाने मैंने चूज किए हैं जिन्हें बजाऊंगी अब से बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले एक नज़र आपके मैसेजेस पर चली जाए मेरी तो अच्छा होगा। रुखसाना अफजल आप हमारा साथ दे रही हैं, गीतों को पसंद कर रही हैं, थैंक यू, स्वागत है आपका इस शो में। मीनाक्षी आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति बेल्जियम से जुड़ी हैं, थैंक यू स्वाद देने के लिए। और ये है मनोज जी क्रॉयडन में प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू मिस्टर नरेंद्र पाठक जी। अरुणा जी हमारे साथ हैं, हमारे शेखर अनन जी हैं, थैंक यू साथ देने के लिए। उषा जी और ये है हमारे कौन, परेश व्यास जी आई थिंक, यस परेश व्यास जी, थैंक यू स्वागत है आपका। संध्या भाव सर थैंक यू। और है निर्मला जी, प्रज्ञा एंड हमारी शर्फून। और शर्फून आपने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, कहती हैं कुछ रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, वो लोग बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्तों के कोई रिश्ता निभाते हैं। क्या बात है, लॉट्स ऑफ लव शर्फून आपके लिए, हमेशा ही प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगला जो गीत है वो ज़रूर मैं आपके नाम करूँगी और आपके साथ साथ उन सभी के नाम जो कह रहे हैं ऋतु, अनिल कपूर, श्रीदेवी, यस मजा आएगा। थैंक यू प्रज्ञा। चलिए शुरू करते हैं जोड़ी नंबर वन का सिलसिला जल्दी से, लेकिन उससे पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 आज आपको देगा 127.2 भारतीय रुपए। और याद रखिए ट्रांसफर आपको SBI branch online या फिर उनके ऐप के थ्रू करवाना पड़ेगा जो है योनो। लेकिन जून से पहले आप कुछ फायदा उठा सकते हैं, कैसे, अगर आप 1000 यानी 1000 पाउंड से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं तो आपको मिल सकता है 75 पाउंड का वाउचर एंड ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड। टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates. Brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 से शुरू हो गया है जिसमें आज नेदरलैंड्स और जापान की टीम भिड़ेंगी और साथ ही साथ ग्रुप ई में होगा मैच जर्मनी और क्वेरेकाओ के बीच में। तो बस ये आप मैच देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ याद दिलाने कि बिल्कुल मत भूलिएगा रैकलो से लीगल एडवाइस लेना। और ये सब हो सकता है, 15 मिनट की लीगल एडवाइस आपको फ्री में मिल सकती है जब आप पेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: तो चलिए अब शुरू करते हैं जोड़ी नंबर वन का सिलसिला। नरेश जी स्वागत है आपका और सुनवाते हैं आज की जोड़ी नंबर वन का पहला गाना जो है श्रीदेवी और अनिल कपूर।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: At AJ Bell, we believe investing is for everyone. And when we say everyone, we mean your dad, Dan, Danielle, Dean, Dave, Dale, Dell's delivery driver Denise, Denise's dentist Dinesh, and Devon's strongest man, Donathan. Donathan? Donathan, that can't be right. Donathan? Well, whatever your name is, if you're a real person, investing is for you too. AJ Bell, feel good investing. The value of your investments can go up or down.
5: Yeh hai Leica Gold, 10:35 AM.
6: Selling your car can be super simple. If you choose We Buy Any Car instead of selling privately, We Buy Any Car can get it sorted in under an hour. So no weekends watching randoms inspect your car to not even buy it. If only they could make finding where you park simpler.
7: Was it floor 2 or 3?
8: I swear I parked here.
7: Where is it?
6: We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanycar.com.

0: क्या धुन बनाई है शिवरी ने और क्या फिल्म थी लम्हे। लेकिन आपको बता दें कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो लोगों को इतनी जमी नहीं थी, इतनी भाई नहीं थी, लेकिन आज इस फिल्म को एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। लेकिन इस फिल्म के बारे में एक बात जरूर बताऊंगी कि यश चोपड़ा ने एक बार विनोद खन्ना को कहा था कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में एज ए हीरो जरूर लूंगा, और जब उन्होंने इस फिल्म की कहानी को गढ़ा तो उनके दिमाग में विनोद खन्ना ही थे। लेकिन जब विनोद खन्ना को उन्होंने उस समय देखा जब ये फिल्म बना रहे थे तो उन्हें कहीं से भी नहीं लगा कि जो अनिल कपूर का एक और रोल है उसमें वो 20 साल के बने हैं, विनोद खन्ना कहीं से भी उस रोल के लिए 20 साल की उम्र के लग पाएंगे। और उन्होंने जब विनोद खन्ना को ये बात बताई तो विनोद खन्ना बहुत अपसेट भी हुए और उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए यश चोपड़ा को, लेकिन यश चोपड़ा अपनी फिल्म अपने तरीके से बनाना चाहते थे और इस तरह से विनोद खन्ना को उन्होंने मना कर दिया। और बाद में फिर उन्होंने जैकी श्रॉफ को अप्रोच किया, जैकी श्रॉफ से कहा, जैकी श्रॉफ ने भी अपनी मूछें हटाकर यश चोपड़ा को फिल्म अपनी फोटोग्राफ्स भेजी, लेकिन यश चोपड़ा को जैकी श्रॉफ की फोटोग्राफ्स देखकर भी लगा कि ये भी 20 साल के कहीं से नहीं लग रहे। और जब अनिल कपूर को ये बात पता चली तो उन्होंने यश चोपड़ा से कहा, मैं ये फिल्म करूंगा। यश चोपड़ा बोले, भाई तुम भी 20 साल के कैसे लगोगे? लेकिन अनिल कपूर ने ये कर दिखाया और उनका उसी दौरान एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो एक महीने तक घर रहे, और जब वो घर रहे तो उन्होंने सोचा मूछें काट के देख लेता हूँ कौन देख रहा है, और उन्होंने अपनी क्लीन शेव की और वो फोटो खींचकर यश चोपड़ा को भेजी और यश चोपड़ा को वो फोटो पसंद आई और इस तरह से अनिल कपूर बन गए इस फिल्म का हिस्सा। हमारी आज की जोड़ी नंबर वन है अनिल कपूर और श्रीदेवी, जिन्होंने कई सारी सुपरहिट फिल्म्स में साथ साथ काम किया है।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए इस जोड़ी का एक और गीत सुनवाती हूँ।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
0: लेकिन गीत को सुनाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप किशोर कुमार के फैंस हैं तो ये शो आप ही के लिए है, Crazy for Kishore, a special musical night featuring Joy, Indrani, Sanjay with Heenal and 515 band. और ये सब होने जा रहा है on Friday 19th June at the Prince Regent Hotel Chigwell, Essex. Tickets available है eventbrite.co.uk पर, या फिर उन्हें call कीजिए on 0208-514-5400 पर। याद रखिए exclusive radio partners है Leica Gold.
1: Riti Sharma on Leica Gold.
3: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: त्रिशूल फिल्म से लिया था ये गाना, जो 1978 की फिल्म थी, एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। और उससे पहले आप सबकी फेवरेट फिल्म ब्लैकमेल, किशोरदा की आवाज में पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और इस गाने को सुनकर ढेरों मैसेजेस आए हैं, और परविंदर मथारू का कहना है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गाना सिर्फ आपने मेरे लिए बजाया है। तो बिल्कुल परविंदर, आप समझ लो कि ये गाना मैंने आप ही के लिए बजाया है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इस गीत को पसंद किया है, थैंक यू गुरुदेव गांजा। आप भी गीतों को एंजॉय कर रहे हैं और आपका कहना है कि पल पल हम लाइका के साथ रहते हैं, तो बिल्कुल हमें आपका साथ ही तो चाहिए, और जो आप देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निर्मला जी। दिनेश सॉरी जी, आपका कहना है कि प्यार के धागे बड़ा ही सुंदर गाना था, मैंने तो पहली बार सुना लेकिन ये तो बहुत सुंदर गीत है। शशि कपूर और जीनत अमान की फिल्म है, और ये 80s की फिल्म है जब शशि कपूर का करियर भी ढलान पर था, लेकिन उस दौरान भी कुछ ऐसी फिल्में बनी जो चली तो नहीं, लेकिन उनका गीत आज भी पसंद किए जाते हैं, और उन्हीं फिल्मों में से था एक ये गाना। थैंक यू भारती जी साथ देने के लिए, थैंक यू शेखर जी, यस धर्मेंद्र भाई इस गाने में थे, एंड अमर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। और सपना का कहना है स्वीडन में तो बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है। मैं आज तो यही कहूँगी क्योंकि बारिश तो यहाँ भी अक्सर होती रहती है। एनीवेज चलिए बढ़ जाते हैं आगे इस आवर में। जैसा कि आप जानते हैं हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं, और ये जो वर्ड्स होते हैं वो बॉलीवुड के किसी एक गाने से मैं पिक करती हूँ, और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो तैयार हैं? चलिए फिर मैं भी तैयार हूँ। तो पहला आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला वर्ड है टूट, टूट जाता है ना, टूट। दूसरा है सागर, और तीसरा है दिल। 1980 की फिल्म है, लता जी की आवाज है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। कौन सा है ये गाना, अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए अपना मैसेज भिजवाकर हमारे इस नंबर पर। पहला वर्ड है टूट, दूसरा वर्ड है सागर, और तीसरा वर्ड है दिल। कौन सा है ये गाना?
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला वर्ड है टूट, दूसरा वर्ड है सागर, तीसरा वर्ड है दिल। 1980 की फिल्म है, लता जी की आवाज है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। बताइए तो जरी कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तब तक मैं आपको याद दिला देती हूँ कि वन पाउंड आज आपको देगा 127.2 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा हमेशा की तरह SBI ब्रांच ऑनलाइन और उनके योनो ऐप के थ्रू। लेकिन एंड ऑफ जून से पहले आप कुछ मौका पा सकते हैं जीतने का, और वो ये है कि अगर आप 1,000 pounds से ज़्यादा ट्रांसफ़र करवाते हैं तो आपको मिलेंगे 75 pounds का वाउचर, और अगर आप 1 gram गोल्ड कॉइन जीतना चाहते हैं वो आपको मिल सकता है जब आप 2,000 pounds से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: When you're facing a serious parenting dilemma, Tesco Whoosh has you covered.
3: Babe, we're running low on nappies.
2: We hear your cries, Sarah. And theirs. Your Whoosh driver is already on it, delivering anything you need from Tesco from as little as 20 minutes. Because no new parent should have to face a poon army without backup. Tesco Whoosh, for when you seriously need groceries fast. Fees apply. Delivery times range from 20 to 60 minutes. Selected areas only. Pricing specific to Whoosh. See tesco.com/whoosh.
4: Yeah, like a gold.
5: Like a gold.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
8: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
9: Selling your van can be super simple if you choose We Buy Any Van. They're on average 11 minutes away, so you can get it all sorted in under an hour. If only they could make keeping your van clean simpler. And spotless.
10: Oh, for crying out loud.
9: We Buy Any Van, selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanyvan.com.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
11: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154848 6.
12: बोले तू क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
12: ये तो बताओ, कोई पता चला?
13: गुरु गुरु,
14: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
12: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
15: शीघ्र शीघ्र।
14: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
16: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Like a Gold।
17: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
18: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
19: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
18: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
20: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
21: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
22: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
23: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
22: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
24: माँ दुल्हन के लिए मेकअप।
22: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
25: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
26: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: किशोरदा की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, और इस गाने को सुनकर मुझे ढेरों ढेरों मैसेजेस आए हैं। थैंक यू अमिता जी कहती हैं, वन ऑफ माय फेवरेट गाना। थैंक यू विनी कहती हैं, ब्यूटीफुल गाना। थैंक यू साथियों जिनको भी यह गीत पसंद आया है। और आप जानते हैं कि इस बार के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं किशोर कुमार, और इस फिल्म में तो किशोरदा हीरो भी थे और उनके साथ थी वैजयंती माला। इसलिए मैंने सोचा कि इससे बेटर गाना आर्टिस्ट ऑफ द वीक के लिए और भला कौन सा हो सकता है।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: तो लीजिए, इतना खूबसूरत गीत आप सुन चुके हैं, और इसी गीत के सिलसिलों को, यानी कि इसी तरह के गीतों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। पहला गाना आप सबके लिए मेरी ओर से मुकेश जी की आवाज में।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये तो था मुकेश जी के आवाज में हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना, जिसे लिया था फिल्म मधुमति से, जिसमें वैजंती माला के साथ दिलीप कुमार थे। म्यूजिक बाय सलील चौधरी। भारती जी, अनिल सोनी वियाना से अमिता जी कहते हैं ये गाना हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे नाम कीजिए। चलिए, आप सभी के नाम पर किया मैंने ये गाना। और ये मैसेज भेजा है उषा मदान जी, आपने प्रोग्राम को सुन रही है, इंजॉय कर रही है, कहती है गाना मेरे भी नाम पर कीजिए। थैंक यू, एंड थैंक यू उषा खोड़ा जी इतने प्यारे मैसेज के लिए, एंड मैं यही कहूँगी आई लव यू टू। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे और सुनवा देते हैं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
0: बिल्कुल सही सुना आपने, मैं ऋतु शर्मा ही हूँ। और आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा अगला गीत बजाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क तारिक हलाल के साथ मिल गए हैं और आपको बताना जा रहे हैं कि उनकी नई ब्रांच खुल रही है, जिसका नाम है रेनर्स लेन में खुल रही है, और वेंसडे 17 जून को, और उनका एड्रेस है 297 रेनर्स लेन, पिनर HA55AJ। पहले 100 कस्टमर्स को मौका मिलेगा क्लेम करने का एक गोल्डन टिकट ऑन ए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, और अगर आप £1 भी स्पेंड करते हैं देन आपको मौका मिल सकता है £50 वर्थ फूड आइटम्स रिसीव करने का। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगे। और याद दिला दें कि लाइका रेडियो नेटवर्क वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट भी करेगा बिटवीन 10 AM अंटिल 1 PM।
1: दिस इज ऋतु शर्मा।
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: जी फिलहाल तो जाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि अभी तो आपको कुछ और गाने सुनवाने हैं, लेकिन ये गाना हेमंत कुमार की आवाज में, हेमंत कुमार के म्यूजिक पर आज के हमारे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना था जिसे आप सबने पसंद किया है। और बहुत सारे साथियों का कहना है हमारा फेवरेट गीत है हमारे नाम कीजिए, तो भैया जिसको अपने नाम करना है कर लीजिए, मेरी ओर से आप सभी के नाम पर जाता है ये गाना। थैंक यू सो मच, आप गीतों को पसंद कर रहे हैं, शो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो अब बारी आ गई है बताने की कि हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाले गाने को कितने सारे लोगों ने सही सही पहचाना है। तो जिन्होंने बताया है कि सागर किनारे दिल ये पुकारे, ये गाना नहीं है, गाना दूसरा है। तो सागर किनारे वाला गाना नहीं है आज का सवाल वाला गाना, और जो गाना है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी। लेकिन जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम है संध्या भावसर, विनोद जी, अदनान जी, नरेन पटेल, रानी इस्लाव से, मनीषा शाह, दिनेश पोपट, राजीव पटेल जी, उल्लास जी टोरंटो से, नरेंद्र पांचाल जी, भरत गंगाराम, अमर जी, रोशनी, उषा खोड़ा, सहर एंड अनिल मांडे। आप सभी ने गीत को बिल्कुल सही सही पहचाना है, और जब सही सही पहचान लिया है तो देर किस बात की है, सुनवाती हूँ बस अब से थोड़ी ही देर में। Holiday breaks are brought to you by South Old Travel. लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि भाई समर आ गया है, हॉलीडे जाना है, तो साउथ ओल्ड ट्रैवल को याद रखिए, विजिट कीजिए साउथ ओल्ड ट्रैवल या फिर उन्हें कॉल कीजिए 020-0208-574-8410 पर। 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं, ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी ले चुके हैं, और आप टिकट्स बुक करा सकते हैं और हॉलीडे डील्स बुक करा सकते हैं, दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स और सब कुछ, एट ऑल प्रोटेक्टेड है। तो ज़रूर उन्हें कॉल कीजिए और अपनी हॉलीडे बुक कीजिए। Holiday breaks were brought to you by South Old Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southoldtravel.co.uk. और अब सुनते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, बट अब से थोड़ी ही देर में। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: When you're facing a serious snack dilemma, Tesco Whoosh has you covered.
2: Dave, we're out of peanuts.
1: We hear you, footy fan. Your Whoosh driver is already on it, delivering anything you need from Tesco from as little as 20 minutes. Because no team player can support from the sofa without nibbly bits. Tesco Whoosh, for when you seriously need groceries fast. Fees apply, delivery times range from 20 to 60 minutes, selected areas only, pricing specific to Whoosh, see tesco.com/whoosh.
3: Yeah. Like a gold.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
13: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
12: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
13: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
12: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
14: Gold Band London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. to win a 5 gram gold coin. If you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
6: Be part of a historic grand opening.
15: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
6: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
15: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
6: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: गड़बड़ घोटाला छे, problems मोटा छे, पर बदु alright छे।
17: मैचे ने back to back 3 movies जोई ली थी।
16: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie बदु alright छे।
17: बेहतर कलकल पाचो आये जैसे पच्ची बदु alright थे जैसे।
16: In cinemas on 12th of June. For more info visit Bakrania Media's Instagram handle.
18: ये वो लगे छे के picture चल्छ।
19: Teachers, tutors और educators के लिए एक special opportunity. RoboThink UK expand कर रहा है. Become a confirmed franchise partner. And receive a robotics kit package worth over £7,500. Parents can also save 10% off on full week summer camps with code LAIKA10. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA. Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
10: London, good news. Aapka favorite iTech ab TRS Cash and Carry South Hall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
20: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our 4 stations on 0207 132 1458 or sales@leicamedia.co.uk.
21: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: आज का हमारा थ्री वर्स गेम वाला गाना। लता जी की आवाज में आशा फिल्म से लिया था। एंड बॉबी जी ये गाना चलिए आपको पसंद है, मैं आपको ही डेडिकेट करती हूँ। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था और हमारे ज्यादातर साथियों ने आज के इस गीत को सही सही पहचान लिया है। और अब आप सब जानते ही हैं कि भाई वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भी तो चल रहा है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
0: तो भाई इंडिया पाकिस्तान का आज मैच है ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में। और आइए जानकारी लेते हैं इस बारे में हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे प्रेजेंटर कमल प्रभाकर जी से। हेलो कमल जी।
4: हेलो रितु जी, कैसे हो? ठीक ठाक
0: जी? बिल्कुल अच्छी। सुनाइए, बताइए क्या है आपके पास?
4: अमेजिंग, टुडे तो बहुत अच्छा। पहला है तो डबल हेडेड है, नेदरलैंड्स 1398 इन 20 ओवर्स, बांग्लादेश चेस कर रही है बहुत अच्छा शानदार से 47 फॉर नो लॉस इन 6 ओवर। बट अभी क्या है, देयर आर प्लेंटी ऑफ यू नो ब्लू शर्ट्स एंड प्लेंटी ऑफ ग्रीन शर्ट्स। इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा गेम स्टार्ट होने वाला है एट 2:30, सो द एटमॉस्फेयर इज सो ब्रिलियंट, सो गुड, द ग्राउंड इज लुकिंग सो ब्रिलियंट, वेदर इज गुड। आई थिंक वी आर सेट फॉर ए इलेक्ट्रिफाई गेम विद इंडिया पाकिस्तान। And let's see what happens. We'll give you the update later on the game.
0: So thank you, Kamal ji. Thank you so much for all these information. Aap se ab next week baat hogi. Take care. Bye.
4: Thank you. Bye-bye.
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
5: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 372 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
6: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
7: LEICA Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 101.17 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: जी हाँ बिल्कुल, आप अपना मनपसंद रेडियो ही सुन रहे हैं जहाँ पर अब तक ऋतु शर्मा आपके साथ थी, लेकिन अब जाने की बेला आ गई है। अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज तक और न्यूज के उस पार गोल्ड पर आपके साथ होंगे अनुराग, लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर आपके साथ होंगे नीरज एंड लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आपके साथ होंगी हमारी फजीला। तो आप इन्हें सुनिए और इसके अलावा अगर आप क्लासिक्स बैक टू बैक सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका गोल्ड 2। 90s के गीतों के शौकीन हैं तो आपके लिए है ऑनलाइन लाइका 90s। और अगर पंजाबी गीत सुनना चाहते हैं तो आपके लिए है लाइका रेडियो पंजाबी ऑनलाइन। और अगर आप इस शो को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लिसन बैक पर जाकर हमारे या तो ऑनलाइन या फिर ऐप पर जाकर इस शो को दोबारा भी सुन सकते हैं। तो बस अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बहुत सारे साथियों ने सुबह से लेकर अब तक इस शो में मेरा साथ दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बस यही कहूँगी कि जब भी समय मिले साथ देते रहिए। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, मौसम अच्छा है, इन्जॉय कीजिए। नेक्स्ट वीक तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।
7: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Leica Gold and Leica Radio Midlands.
8: ये है
9: लाइका गोल्ड.
7: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग आफ्टर ब्रशिंग. सिद्धायु टूथपेस्ट टेक्स इट टू अनदर लेवल. क्लोव, नीम, हर्बल एक्टिव्स, प्रॉपर आयुर्वेदिक केयर, बट मॉडर्न एंड प्रीमियम. फ्रेश ब्रेथ, हेल्थी गम्स, नो हार्श केमिकल्स. फ्रॉम द हाउस ऑफ बैद्यनाथ, विद ओवर 100 इयर्स ऑफ आयुर्वेदिक लेगेसी. अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स एंड अदर लीडिंग रिटेल स्टोर्स अक्रॉस द यूके. सिद्धायु with that fits your life.
10: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
11: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
10: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
11: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
10: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
12: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
13: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
12: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
13: गारंटेड.
12: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.

0: किशोर दा और लता जी की आवाज में मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गाना सुन रहे थे। आप स्टार कास्ट में नजर आए थे, अमिताभ बच्चन नटवर लाल, मिस्टर नटवर लाल का किरदार निभाया था और रेखा शन्नू के किरदार में नजर आई थी। इसके अलावा मुख्य भूमिका में थे अजीत, अमजद खान जो विक्रम सिंह की किरदार में नजर आए थे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, आप लोगों के प्यारे प्यारे संदेशों का। शुक्रिया रितु शर्मा जी को, इससे पहले थी हॉट सीट पर। आप सुन रहे हैं एवरी वीकेंड वाला आपका सुपर संडे वाला शो। मैं हूं आपके साथ अनुराग। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं फिल्म मिस्टर नटवर लाल की कहानी की। जो कहानी इंस्पायर्ड हुई थी, जो जिससे प्रेरणा ली गई थी, वो एक रियल किरदार थे। फिल्म का नाम और मुख्य किरदार भारत के कुख्यात ठग नटवर लाल साहब, जिन्हें कहा जाता था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उनका असली नाम, उनसे प्रेरित ये कहानी थी। गायक के रूप में अमिताभ बच्चन ने भी यहाँ पर अपना हाथ आजमाया, गला आजमाया और काफ़ी फेमस रहा उनका प्लेबैक सिंगिंग का दौर भी। राजेश रोशन साहब ने इस फिल्म के को संगीत दिया था और आनंद बख्शी साहब ने कमाल के गाने लिखे थे जो उस दौर में चैटबस्टर थे। वैसे इस फिल्म के टाइटल को यानी कि मिस्टर नटवर लाल को लेकर भी बड़ा विवाद रहा, लेकिन फाइनली क्लियरेंस मिल गई, क्लीन चिट मिल गई और फिल्म का टाइटल मिस्टर नटवर लाल ही रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला गाना सुनाते हैं आपको लता जी की आवाज में। नजरें मिलाने के लिए रहिए तैयार।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 127.20 याद रखें अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: When you're facing a serious parenting dilemma, Tesco Whoosh has you covered. Babe, we're running low on nappies. We hear your cry, Sarah. And theirs. Your Whoosh driver is already on it, delivering anything you need from Tesco from as little as 20 minutes. Because no new parent should have to face a poon army without backup. Tesco Whoosh, for when you seriously need groceries fast. Fees apply. Delivery times range from 20 to 60 minutes. Selected areas only. Pricing specific to Whoosh. See tesco.com/whoosh.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
4: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता.
5: मन है इश्क मस्ताना.
3: मैं वापस आऊंगा. A film by Imtiaz Ali.
4: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं.
3: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas now.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me.
8: Southall Travel, at all protected.
3: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
9: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
3: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
9: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
3: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
10: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
11: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
10: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
11: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
10: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
11: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
10: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
11: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA. PRA and regulated by the FCA and PRA.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
15: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
16: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
17: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Yeh hai Jaimin Foods ka vibe check.
18: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
17: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
19: Lotto from the National Lottery now gives you 2 chances to win with every ticket. So it could be you, and it could be you. You, and then the same you, again. You. 1 ticket, 2 chances to win. New Lotto. It could be you, and it could be you. See website for Lotto changes. Rules apply. Players must be 18 or older.
20: Like a goal. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे.
21: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: चले।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: किशोर दा और लता जी की आवाज में जोएल थी फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप। और जब भी आप ये फिल्म देखेंगे ना तो आपको ये फिल्म पूरी तरह से बांध लेती है। ऐसा नहीं होता कि आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर चले जाएं, पूरी फिल्म कंप्लीट करके ही आप उठते हैं। इतनी कमाल की कशिश, इतनी गजब की स्टोरी लाइन और इतनी गजब की अदायगी इस फिल्म में। लेकिन अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं जो घर के कोने में अक्सर बैठे रहते हैं, किसी के ख्यालों में खोए रहते हैं, गुम रहते हैं, तो समझ लीजिए उनके दिमाग में, उनके दिल में यही गाना प्ले हो रहा होता है जो हम कर रहे हैं। अगला गाना किशोर दा और लता जी की आवाज़ में, फिल्म का नाम रामपुर का लक्ष्मण।
1: On Rag with Golden Rag.

0: किशोर दा और लता जी की आवाज में रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप। केदार भार्गव यादोगे मनमोहन कृष्ण और उनकी पत्नी लक्ष्मी सुलोचना लाडकर। सोच रहे होंगे क्या कह रहा है ये कहानी का सारांश। रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम। किशोर दा की आवाज में ये गाना और लता जी के साथ ये गाया हुआ गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह और शाम इतना लोकप्रिय हुआ, इतना लोकप्रिय गाना हुआ उस दौर में, इतना पसंद किया गया कि बाद में इसे इंटरनेशनल और हिप हॉप गाने में भी सैंपल किया गया। कमाल का। इस फिल्म का संगीत आड़ी बर्मन साहब का दिया हुआ संगीत और मजरू सुल्तानपुरी साहब गीत लिखने में उन्होंने जान फूंक दी। अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं 80s का, फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई और इसके बाद हम आपको बताएंगे आज का गोल्डन वर्ड। कहीं मत जाइए, बांध कर रखिए अपनी अपनी कुर्सियों की बेटियां।
1: हाय, मैं हूं अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: सलीम जावेद साहब की जोड़ी ने इस फिल्म की कहानी को लिखी थी और जैसे कि मैंने आपको बताया था अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म नटवरलाल भी एक रियल किरदार के ऊपर आधारित थी, उसी से प्रेरित थी। और फिल्म दीवार की अगर बात करें तो ये भी एक रियल डॉन की ज़िंदगी पर प्रेरित थी, लेकिन उनका हम नाम नहीं लेंगे भैया, आगे बढ़ेंगे। और ये किरदार भी बड़ा ही फेमस हुआ था, ख़ास तौर पर इस फिल्म के गाने हों और बच्चन साहब की दमदार एक्टिंग हो। आगे बढ़ गए हैं, अगला गाना आपको सुनाने जा रहे हैं लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में, और इसके बाद हम आपको बताएंगे, आप बताएं और हम सुनाने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन बर्ड। फिलहाल ये गाना उन लोगों के लिए है जो उस दौर के अपने उस इंतज़ार को खतों में संजो कर रखे हुए हैं, क्योंकि ये गाना उस दौर का है। सुनते रहें गोल्डन राग।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.59 पाकिस्तानी रुपीस, 373 श्रीलंकन रुपीस, 449.29 बांग्लादेशी टका, 164.52 अफगान अफगानी 86.23 एंड 1 US dollar 1.34.
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.17 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
1: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
0: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
1: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
0: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
1: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
0: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
2: विल नहीं है, ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। अपनी फैमिली को सिक्योर करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 02089072444।
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: ऑन रॉग विद गोल्डन रॉग।

0: अमित कुमार साहब आपकी दिल को छू लेने वाली आवाज, तेरी कसम फिल्म के इस गाने में खास तौर पर। और ये गाना प्रफुल्ल और सुमन जी ने हम तक पहुंचाया है आज की थीम को ध्यान में रखते हुए, दिमागी बत्ती जलाते हुए। और पहला गाना हमने आपको अपनी तरफ से सुनाया था, फिल्म का नाम था त्रिनेत्र। 1991 में फिल्म आई थी, बड़ा ही कमाल का ये गाना एसपी बाला सुब्रमण्यम और सपना मुखर्जी जी की आवाज़ों में। तो आज दिमागी बत्ती जलानी है आपको, बात बात में हम तक पहुंचाने हैं अपने जज्बात। और अगला गाना आ रहा है रफ़ी साहब के साथ, फिल्म का नाम है अमानत। किसने भेजा है जल्दी बताते हैं, लेकिन उससे पहले और भी बाकी अपडेट्स आपके लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.20 पैसे। याद रखें अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
2: लाइका गोल्ड,
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो भाई ऑस्ट्रेलिया और टर्की के बीच में मैच हो चुका है और इसके अलावा हाइती और स्कॉटलैंड के बीच में भी रिजल्ट आ चुका है, लेकिन दो मैच और आज के दिन जर्मनी और बैंको के बीच में और नीदरलैंड जापान के बीच में 9 बजे।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Yeah. Leica Gold.
4: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler.
5: To the right a bit, mate. Yep, back. Back a bit. Bit more. Oh, no, too far.
4: We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
6: हेलो केचो मुचो केची दवेना आ શું થયો અરરો પબ્લિક ડિમાન્ડ ફરીથી આવી રહી છે લંડન મારો નવો નાટક લઈને પત્ની પ્રીમિયર લીગ એટલે કે PPL યસ ફ્રોમ 3rd જુલાઈ ટિલ 12th ઓફ જુલાઈ વાઓ એન્ડ ધીસ ઇઝ બીંગ પ્રેઝન્ટેડ બાય પંકજ સોડા ગેલેક્સી શોઝ યાદ રાખજો
7: પત્ની પ્રીમિયર લીગ શોઝ એટ ટ્રાઇસ્લીપ અલ્બર્ટન ઈસ્ટ એન્ડ સાઉથ લંડન લોર હોમ લેસ્ટર ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન કોલ દીપા ઓન 0794756194
8: चलो जाइए एक नवा सफर पर सीरीन हॉलिडे
9: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
10: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ,
9: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
10: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
9: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
11: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
12: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
11: ये तो बताओ कोई पता चला?
12: गुरु गुरु,
9: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
11: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
13: शीघ्र शीघ्र
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208514540, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
14: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
15: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
16: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
15: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
16: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
15: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
16: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
15: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
13: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
17: This is huge.
13: Fadi Kalal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
17: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
13: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
17: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
13: Fadi Kalal, Rainer's Lane. There is only
12: ગડબડ ગોટાળા છે, પ્રોબ્લેમ્સ મોટા છે, પણ બધું ઓલરાઇટ છે.
18: મેં છે ને બેક ટુ બેક ત્રણ મૂવીઝ જોઈ લીધી.
12: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વિરજ ગિલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી. બધું ઓલરાઇટ છે.
18: બે ત્રણ કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધું ઓલરાઇટ થઈ જશે.
12: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન. ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ.
19: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે.
20: 40 મિલિયન પીપલ લિસન ટુ કોમર્શિયલ રેડિયો ઈચ વીક. ધેટ્સ 80 મિલિયન ઇયર્સ, ગિવ ઓર ટેક. Amplify your advertising at radiocenter.org.
21: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
22: BAPS મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
21: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
22: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
21: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
22: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
21: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ.
22: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
23: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
24: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02208767627.
25: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
26: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
27: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: रफ़ी साहब की आवाज़ में अमानत फिल्म का ये गाना वाकई में रफ़ी साहब की दी हुई अमानत ही है। बड़े प्यार से, बड़े ही सलीके से इस गाने को उन्होंने निभाया है और ये गाना हम तक पहुंचाया है समीर जी और प्रफुल्ल जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: भाई अच्छी क्वालिटी के फूड के लिए लाइका रेडियो नेटवर्क ने हाथ मिला लिया एक बार फिर से तारिक हलाल के साथ, जो कि उनकी नई ब्रांच ओपन हो रही है रेनर्स लेन में और जिसका शुभारंभ हो रहा है वेनेसडे 17 जून, लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन पिनर, पोस्ट कोड है HA55EJ और पहले 100 कस्टमर्स को मिलेगा गोल्डन टिकट हासिल करने का चांस। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे स्पेंड कीजिए £1 और रिसीव कीजिए £50 के यानी कि £50 वर्थ का फूड आइटम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लाइक अ रेडियो नेटवर्क विल आल्सो बी ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम देयर फ्रॉम 10 AM अंटिल 1 PM।
0: On Rag with Golden Rag. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: फिल्म का नाम राही बदल गए। लता जी किशोरदा की आवाज में, आरडी बर्मन साहब का खूबसूरत संगीत और ये गाना हम तक पहुंचाया था संध्या भावसर जी और सुमित चौरसिया जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: और जनाब किशोर कुमार साहब के फैंस के लिए है खुशखबरी, क्रेजी फॉर किशोर एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्रानी, संजय विद हिनल एंड 515 बैंड। और ये इवेंट हो रहा है फ्राइडे को 19 जून प्रिंस रीजेंट होटल चिंगवेल एसेक्स में। टिकट मौजूद है eventbrite.co.uk पर। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0208-514-5400। Exclusive radio partner Leica Good Radio.
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: इसके अलावा अगर आपको अपना हॉलीडे यादगार बनाना है तो Southall Travel का दीजिए साथ। एक्सप्लोर कीजिए बीच ब्रेक्स, सिटीस्केप्स एंड ज्यादा से ज्यादा एंजॉयमेंट एक्साइटमेंट। हॉलीडे के लिए डील्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर मौजूद है फ्लाइट्स, होटल और सब कुछ है अटॉल प्रोडक्शन के साथ। 40 साल से ज़्यादा का भरोसा और ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड विजेता। विजिट कीजिए Southall Travel। कॉल कीजिए, नंबर है 0208574-8410।
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
4: ये है Leica Gold 10:35 AM
3: Leica Extra podcast update.
1: लगे हाथ लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का अपडेट भी आपको दे देते हैं। और इस बार का पॉडकास्ट है बड़ा ही स्पेशल, बॉलीवुड रिवाइंड अ थ्रोबैक टू 2000s, होस्टेड बाय अनुज राडिया। और ये आपको पॉडकास्ट देखने को मिलेगा लाइका एक्स्ट्रा पर, ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
3: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
5: ये है Leica Gold.
6: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
7: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट travelhubworld.com।

0: यहाँ जिंदगी वहाँ सेक्टर माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
2: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
3: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
3: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50 प्लस एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
3: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
3: High appreciation
2: in Dubai
4: The voice that touches every soul Star Express presents Hariharan's Soul India
5: Live in London Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan
4: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
5: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
6: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
5: Plus, beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
6: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
7: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
8: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तो ये आखरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
9: हमन है इश्क मस्ताना।
7: मैं वापस आऊँगा। A film by Imtiaz Ali.
8: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
7: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas now.
10: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
11: Eviction? Tenant dispute? Property ka masla? Kenton Solicitors London landlords aur tenants ke liye fast action lete hain aur residential aur commercial conveyancing plus commercial leases handle karte hain. Abhi call kare 0208-907-2444. That's 0208-907-2444.
12: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ अपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
13: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
14: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जैमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
13: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जैमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
15: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन On this week's Leica Extra podcast, Anuj Radia rewinds Bollywood back to the 2000s.
16: I remember seeing Cocktail.
17: Oh, that was 2012, yeah.
16: And thinking, my God, we're seeing themes that, like, I thought that was a bit... We would say in that time, that was a bit, like, rogue, and it was a bit like, oh, my God, like, love triangle, like... And now you look at the films being made, and that's not rogue at all.
15: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
18: नमस्कार रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा
19: ऑन राग विद गोल्डन राग

0: जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना मेरा साथ। जुर्म फिल्म का गाना सुन रहे थे आप सानू दा और साधना सरगम जी की खूबसूरत आवाजों में, और ये गाना हम तक पहुंचा है बहुत सारे लोगों ने। मीना शाह जी, अमित पटेल जी, भाविशा, विजय जी, हंसा बोरा जी और नंदन पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस गाने को इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। आप सुन रहे हैं सुपर संडे वाली महफिल गोल्डन राग के साथ, मैं हूं आपके साथ अनुराग। अगला गाना रफी साहब की आवाज़ में, फिल्म का नाम है ताजमहल, और ये गाना हम तक पहुंचाया है भरत गंगाराम जी ने और पंकज वर्मा जी ने।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi through 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.47 पाकिस्तानी रुपीस, 372.91 श्रीलंकन रुपीस, 449.21 बांग्लादेशी टका, 164.52 अफगानी 86.13 एंड 1 US डॉलर 1.33.
3: Like radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.17 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.

0: एरी पवन, लता जी की आवाज में बेमिसाल फिल्म का ये बेमिसाल गाना हम कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी सुनो बड़ा ही पसंद आने वाला ये गाना, बड़ा ही खूबसूरत गीत। और इसी साथ आपको बताने का मौका आ चुका है आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शन, जल्दी से बता देता हूँ आपको। कायदे प्लस कानून इस खेल के हम आपको तीन ऑप्शन देंगे, ए बी एंड सी, जो कि गानों के ऑप्शन होंगे, और जिनमें से किसी एक को आपको चुनना है और उसे वोट की तरह हमारे स्टूडियो के नंबर पर कास्ट करना है। और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट हमें रिसीव होंगे वो गाना होगा विजयी और वो बनेगा आज का गोल्डन राग। तो ऑप्शन ए है आपके लिए, बड़ा ही प्यारा गाना रफी साहब की आवाज में, दीवाना हुआ बादल, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। ऑप्शन बी है तुमसे दूर रहकर, फिल्म का नाम है अदालत, ये भी रफी साहब की आवाज में। और ऑप्शन सी है तुम जो हमारे मीत ना होते, फिल्म का नाम है आशिक। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ऑप्शन ए है दीवाना हुआ बादल कश्मीर की कली फिल्म से, ऑप्शन बी है तुमसे दूर रहकर, फिल्म का नाम है अदालत, और ऑप्शन सी है तुम जो हमारे मीत ना होते, फिल्म का नाम है आशिक। अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें क्योंकि वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, और बहुत जल्द हम आपकी बात कराएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से भी, और वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 का ताज़ा अपडेट लेकर। तो कहीं में जाइए, जुड़े रहें और अपने अपने ऑप्शन हम तक भेजते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: India में पैसे भेजना चाहते हो तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.20 पैसे। याद रखो अपने पैसे को आप वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
3: Like a Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: तो 6 बजे होगा मैच जर्मनी और कोरागांव के बीच में, और इसके अलावा दूसरा मैच आज 9 बजे नेदरलैंड और जापान के बीच।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203-345-2000 or visit raklaw.co.uk.
2: This is Like a Gold.
4: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car instead of selling privately. We Buy Any Car can get it sorted in under an hour, so no weekends watching randoms inspect your car to not even buy it. If only they could make finding where you park simpler.
5: Was it floor 2 or 3? I swear I parked here. Where is it?
4: We Buy Any Car. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanycar.com.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410, and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me.
8: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: भाई मैं नहीं कहूंगा कि ये बात सही है, लेकिन आप यकीन रखिए गाना बड़ा ही कमाल का। किशोर दा ने पूरी जिंदा दिली के साथ इस गाने को निभाया। अगर तुम ना होते फिल्म से सुन रहे थे आप इस गीत को, और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस, ऑप्शन ए है दीवाना हुआ बादल फ्रॉम द फिल्म कश्मीर की कली, ऑप्शन बी है तुमसे दूर रहकर फ्रॉम द फिल्म अदालत, और ऑप्शन सी है तुम जो हमारे मीत ना होते, फिल्म का नाम है आशिक। अभी भी वोटिंग लाइन्स ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें, और अगले गाने के बाद हम सीधे जुड़ेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कमल प्रभाकर जी से आपको ताज़ा वुमेन्स वर्ल्ड कप T20 का अपडेट देने के लिए।
1: लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
0: Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
4: तो चलिए जल्दी से कमल जी को फोन लगाते हैं और उनसे ही ताजे अपडेट लेते हैं अभी के चल रहे मौजूदा खेल के. हेलो कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. कैसे हैं आप?
5: बस ठीक ठाक है, आप सुनाओ कैसे हो?
4: जी यहाँ पे भी सब लोग अच्छे हैं. बस अपडेट आपसे चाहते हैं कि आज के जो बड़ा वाला जो मैच है, उस जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दरमियान शुरू हो चुका है, और पहले क्या चल रहा है वहाँ पर, आप थोड़ा सा अपडेट देंगे उसके बारे में?
5: आपने बहुत अच्छे टाइम में फोन किया. इंडिया का 100 हुआ, बट एक्चुअली क्या था, इंडिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट, बट दे वर सो वेरी ट्रबल में थे, दे लॉस्ट विकेट स्ट्रेट अवे और देन दे वर टू डाउन, बट दे हैव रिकवर्ड. पाकिस्तान हैज बॉल्ड वेल, दे फील्डेड वेल, दे ड्रॉप कपल ऑफ कैचेस, बट नाउ इंडिया 108 for 2, and now they for the big race, and they are doing pretty well at the moment. Interesting for 2 in 12.5 hours, and the crowd is fantastic. It is full out. You got more blue shirts than green shirts, but there is a good support for Pakistan and very good support for India at the moment.
4: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इतना बड़ा मैच है और जो इस वक्त का करंट रन रेट चल रहा है 7.95 का चल रहा है, आपको उम्मीद है कि 20 ओवर खत्म होने से पहले अच्छा खासा स्कोर इंडिया पाकिस्तान के सामने खड़ा करके देगी?
5: ये दोनों प्लेयर जो है दे आर वेरी एक्सपीरियंस, बोथ द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, और ये विकेट्स आर इन हैंड, तो ये एक्चुअली दे स्टे हियर अदर 5 ओवर. They will really go well, and I think they'll put a very good respectful score on the board. On this Pakistan, they have a bit of difficulty to chase. So, ये उम्मीद है कि इंडिया के ये दो खिलाड़ी इधर ही रहोगे on the crease, they will get a good score. अच्छा रहेगा. But the 8 अभी तो 8 हो गया पर ओवर.
4: जी बिल्कुल सही है. तो ठीक है, बाकी के अपडेट हम आपसे फिर से लेंगे कमल जी. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
5: Very good. Thank you so much.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
6: Leica Gold.
0: On Rug with Golden Rug. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
7: Save up to 50% in the Dunelm sale.
8: Go on, get even more savings in your life with up to 50% off thousands of products, from bedding and bathroom to curtains, furniture and loads more.
7: Sale.
8: And breathe. Don't miss even more savings in-store, online and on the Dunelm app. Dunelm, the home of homes. T's and C's apply.
9: Yeah.
10: Leica Gold.
11: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
12: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
11: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
12: विजिट TravelHubWorld.com.

0: ऑल टाइम हिट गाना लता जी की आवाज में, साथ ही फिल्म का ये खूबसूरत गाना। और इसी के साथ हमें आपको है ये बताना कि आज का गोल्डन राग चुना जा चुका है और हमने तय कर लिया कि आपको जल्दी से सुनाएंगे भी। तो कौन सा होने वाला है आज का गोल्डन राग, जल्दी से बताते हैं आपको।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 127.56 पाकिस्तानी रुपीस, 373.08 श्रीलंकन रुपीस, 448.11 बांग्लादेशी टका, 164.69 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £101.17 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: रफी साहब लता जी की आवाज में तुमसे दूर रह के। अदालत फिल्म का एक गाना गुलशन बावरा जी ने इस गाने के बोल लिखे थे और कल्याण जी आनंद जी का खूबसूरत संगीत था। जल्दी से लेते हैं नाम, किसने किसने दिया इस गाने को वोट और बनाया इस गाने को आज का विजेता। मीना शाह जी, प्रज्ञा जी, गैरी बरार, चंपा जी, अयूब चौहान जी, मिसिज इकबाल बेगम, प्रतीक, पंकज वर्मा, शांतिलाल, शालिनी, सुमित चौरसिया, कंचन, पंकज वर्मा, कमलनाथ। पंकज वर्मा दो बार हो गए, पंकज शाही हैं ये। अच्छा जी, आप वैसे बहुत सारे आज वोट जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गए तीनों गानों में, लेकिन आखिरकार बाजी मारी तुमसे दूर रहकर। लेकिन आपको दूर नहीं रहना है लाइका नेटवर्क के साथ, क्योंकि नेक्स्ट आ रही है सरिता जी आपको अच्छे अच्छे गाने सुनाने। अब मेरी होगी आपसे मुलाकात अगले सप्ताह, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।
1: ये है लाइका गोल्ड। Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
2: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
2: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
2: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
2: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
3: It's India versus Pakistan, and this is India's lineup.
4: This tune, the FIH Hockey Pro League, brings one of sport's greatest rivalries to London.
5: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
4: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
5: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
3: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
6: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
7: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
8: अमन है इश्क मस्ताना।
6: मैं वापस आऊंगा, a film by Imtiaz Ali.
7: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
6: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas now.
5: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
9: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
13: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira Twin Center Escape. Fly from the UK, enjoy three night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड्स से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
15: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
16: The future belongs to creators. At RoboThink Summer Camps, children build robots, learn coding and future-ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code LEICA10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
17: Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Leica Gold.
18: Hey there, main hoon Bali Brambat. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, unsuni baatein, raag adharit gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m.

0: प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. किशोरदा की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत कटी पतंग से चुना गया था. 1971 की फिल्म थी, वो दौर था राजेश खन्ना का, और कटी पतंग में इनकी हीरोइन थी आशा पारेख. दोनों ने बहुत सी फिल्मों में एक साथ काम किया और बहुत कामयाब भी रहे. उम्मीद करती हूँ मेरा चुना हुआ गीत आपके मन को भाया होगा और पुरानी यादें ताज़ा ज़रूर करती होंगी.
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai like a gold. 10:35 AM.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: प्यार का दर्द है मीठा मीठा, ये गीत बहुत पसंद है मुझे भी और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी ज़रूर इंजॉय किया होगा। फिल्म का नाम था दर्द यानी पेन। इन 1981 में आई थी ये फिल्म, जिसमें राजेश खन्ना का डबल रोल था एंड हीरोइन थी इस फिल्म की हेमा मालिनी और इसी फिल्म में पूनम ढिल्लन ने भी काम किया था। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इस फिल्म के लिए इनका नाम नॉमिनेट हुआ था फॉर द बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का। एंड काफ़ी चली थी ये फिल्म और पसंद भी की गई थी। फिल्म का संगीत तैयार किया था खय्याम साहब ने और 14 अगस्त 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो ये सारी जानकारी भी आपके साथ शेयर कर दी मैंने।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: लाइक रेडियो नेटवर्क के जरिए आप कुछ ना कुछ हमेशा ऑफर्स लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं हम। लाइक रेडियो नेटवर्क टीम ऑफ विद तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे 17th June, लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन, पिन HA55EJ. The first 100 customers will have the chance to claim a golden ticket on a first-come, first-served basis and spend £1 only and receive £50 worth of food items. TNC applies. So, like a radio network, jo hai, they will be also broadcasting live from there from 10 a.m. till 1 p.m. तो जाना मत भूलिएगा।
2: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स।
3: प्यार मोहब्बत के

0: all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: You think a football coach just teaches how to kick a ball?
2: Nah, a football coach gives you the skills to win in life.
3: I stay focused for 90 minutes.
4: So a 60-minute exam is no Swift.
5: Job interviews don't scare me.
1: I'm up against 11 players every week.
6: And I'm not just captaining a team.
7: I'm prepping for when I'm running my own company.
8: A coach's influence goes beyond the pitch. That's why Chase Bank has funded over 6,000 grassroots coaching qualifications. Search Chase.
9: This is Like a Gold.
10: TravelHubWorld.com Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
11: TravelHub, best service with unbeatable price.
10: At all protected.
11: Visit TravelHubWorld.com.
12: चलो जाइए एक नवा सफर पर
13: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
14: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
13: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
14: कॉल करो दीप्ति पांड्या ने
13: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
15: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
16: इन रियल एस्टेट लोकेशन is everything and this one is a winner.
15: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
16: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
15: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
16: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
15: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
16: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location.
15: High appreciation.
16: In Dubai.
17: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
18: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
17: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
18: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
17: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
18: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
17: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
19: Gadbad gotala che. Problems mota che. Par badu alright che.
20: Mechene back to back 3 movies joy lidi.
19: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie Badu Alright Che.
20: Betan kalakmal pacho avi jase ne pachi badu alright thai jase.
19: In cinemas on 12th of June. For more info visit Bakrania Media's Instagram handle.
21: Devu lage चेके पिक्चर चल्च
22: वीजा प्रॉब्लम इंतजार मत करें हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन असाइलम केसेस अपील्स स्किल्ड वर्कर वीजा स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 दैट्स 0208-907-2444
23: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई फ्रॉम ब्रेथ टेकिंग वेडिंग ज्वेलरी टू द फाइनेस्ट डायमंड रिंग्स डू कम इन एंड सी अस एट Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
24: Tonight is the night.
25: Atif Aslam performs live at the O2 today. Get ready for an unforgettable evening. Last tickets available at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
26: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द ऋतु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
2: Sarita Sabharwal with your weekend class.

0: वैसे ऐसे गाने तो आप हमारे विंटेज गोल्ड प्रोग्राम में सुनते हैं, सैंडी विल बी आफ्टर मी 7 o'clock, लेकिन अब ये गाना 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया से मैंने चुना। नूतन थी इस फिल्म की हीरोइन बलराज सानी तहीर और तलत महमूद भी ने भी एज एन एक्टर इस फिल्म में काम किया था। बहुत प्यारी फिल्म थी और बहुत अच्छे अच्छे गीत, और उन्हीं में से मैंने चुना था ये वाला गाना, और उम्मीद है कि ये गीत आपने ज़रूर पसंद भी किया होगा।
1: Sarita Sabharwal. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: चलिए बता दें कि इस वक्त करेंसी का रेट क्या चल रहा है। एक पाउंड के बदले इंडियन रुपीस 127.60, पाकिस्तानी रुपीस 373.16, श्रीलंकन रुपीस 449.43, बांग्लादेशी टका 164.64, अफगानी 86.26 एंड US डॉलर्स 1.34.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold ka rate is waqt market mein chal raha hai, 101 pounds and 17 pence ka 1 gram sona.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे गीत मैं आप तक पहुंचाऊं, ऐसे गीत जिनके साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी हों। तो अगर कोई भी याद आपकी जुड़ी है इन गीतों के साथ और आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिनके व्हाट्सएप मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू एवर सो मच, बड़ी एफर्ट करते हैं, अपना टाइम देते हैं और मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं। इसी तरह से साथ रहिएगा, मैं 7 बजे तक आपके ही साथ।
1: This is Leica Gold. Reminisce those classics.

0: जसपिंदर नरूला की बुलंद आवाज़ में आपने ये गाना सुना। ये टाइटल ट्रैक था फिल्म का। अनीस बज़मी ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी। अजय देवगन और काजल ने इस फिल्म में काम किया था और इंग्लिश फिल्म फ्रेंच किस पर ये बेस्ड थी फिल्म, ऐसा माना गया है अनऑफिशियली। एंड एट द 44th फिल्म फेयर अवार्ड प्यार तो होना ही था रिसीव्ड 5 नॉमिनेशंस इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अमरीश पुरी एंड वन बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जसपिंदर नरूला फॉर दिस सॉन्ग विच आई प्लेड इट फॉर यू। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। और इस फिल्म का संगीत था जतिन ललित का और सुरेंद्र सोढ़ी ने इस गीत को इस फिल्म के बैक स्कोर दिया था। एंड उम्मीद करती हूँ कि गीत आपने पसंद किया ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
3: इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में। India versus Pakistan live at Lee Valley Hockey and Tennis Center. High speed action, high intensity moments. Bilkul unmissable. Apne tickets abhi book kare at englandhockey.co.uk.
4: Joy from the scoring, he does.
3: India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
2: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
5: Gold Band London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. For you to win a 5-gram gold coin. If you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
6: Are we there yet?
7: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
8: Relax, I've booked the Uber already.
7: But how? My roaming isn't even working yet.
8: I switched to Simzy before we left London.
7: Simzy? Since when are you the tech expert?
8: Since I decided I want a stress-free holiday.
9: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
8: T's and C's apply.
10: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
11: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन। विजिट महाराजा टूर्स .co.uk या कॉल 07956154
12: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
13: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
12: ये तो बताओ कोई पता चला?
13: गुरु गुरु,
14: इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
12: साधु तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
15: शीघ्र शीघ्र।
14: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208 514 5400, बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट।
1: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica Gold,
16: the voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
17: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
16: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
17: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
18: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
19: Father son no bond jitlo special che, itli j special film aavi rahi che.
0: Uncle tame pehla thi aawaz chho.
8: Aava etle keva.
20: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
21: Maro baap banvani koshish karat tu, buddhi vechi aave chhe tu. Are jindagi evi mauj thi jeevje ke jindagi khud tane aavi na puche.
22: Our Father's Day, feel the emotions, love and family moments with Zindagi Once More in cinemas on 19 June. For more information, visit Bakrania Media on Instagram.
21: So thai jaye. जिंदगी वंस मोर है।
23: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
24: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
23: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: प्रोग्राम के सेकेंड आवर के पहले दो गाने बहुत खूबसूरत गीत थे। उम्मीद करती हूँ कि इन मेलोडियस गानों को आपने ज़रूर पसंद किया होगा। अलका याग्निक एंड कुमार सानू की आवाज़ें शामिल थी फर्स्ट सॉन्ग में, और उस गीत को मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म अमानत, इन 1994 में आई थी ये फिल्म। और दूसरा गीत था फ्रॉम द फिल्म प्यार झुकता नहीं, 1985 की फिल्म थी। एंड इस गीत में आवाज़ें दो आपने सुनी शबीर कुमार एंड लता मंगेशकर की। उम्मीद करती हूँ कि आपने ज़रूर इन्जॉय किए दोनों के दोनों गीत। प्रोग्राम के इस आवर में कुछ एक गाने मैं शामिल करने जा रही हूँ भारत भूषण जी की फिल्मों से। भारत भूषण जी वॉज बॉर्न ऑन 14 जून 1920 में मेरठ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। पूरा नाम था भारत भूषण गुप्ता, और उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी भी है। एंड मैंने सोचा कि उनकी फिल्मों के कुछ एक गाने तो ज़रूर होने चाहिए। वैसे उनकी एक्टिंग मुझे कुछ एक फिल्मों में बहुत अच्छी लगी थी, एंड आई रियली लव दोज फिल्म्स लाइक बरसात की रात, लाइक शबाब, बेजुबावरा, ऐसी फिल्में कैसे भूल सकते हैं हम। एंड इनकी बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी देती रहूँगी, लेकिन कुछ एक गाने मैं शामिल करूँगी। हाँ, 60s से पहले की भी कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया, लाइक बैजू बावरा। सो लेट मी सी इफ आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम बैजू बावरा, या फिर कुछ और जिन फिल्मों में वो थे ज़रूर, पर हो सकता है कि वो गाने उन पर पिक्चराइज ना हुए हों। आपकी कोई ख़ास फरमाइश है और आप भारत भूषण जी की कोई एक फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर क्या है। जिस भी जरिए को आपने चुना है, जहाँ भी बैठे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका संडे अब तक बहुत अच्छा बीत रहा है। और मैं बता दूँ कि आज संडे के लिए मैं भी एक चार्टर लंच पर गई थी, और इस लंच पर बहुत सी हस्तियाँ थी, बहुत से लोग मिले, सबसे मिलकर बहुत खुशी भी हुई। एंड सब ने ये भी बताया कि वो सुनते हैं हमारा लाइका गोल्ड, बड़े प्यार से सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। एंड ये फिंचले लाइन्स क्लब ऑफ लंदन फिंचले का प्रोग्राम था, जो चार्टर लंच एक वाटफर्ड के होटल में ऑर्गेनाइज किया गया था। वहाँ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप सब मुस्कुरा दीजिए। आप सबके नाम तो याद रखना सरिता के लिए बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और जब सब ने कहा कि लाइका गोल्ड के सभी प्रोग्राम्स उनको बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये जानकर और भी अच्छा लगा। नरेश छत्रालिया जी और इन परिवार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। इनके अलावा कल्पना शाह एंड प्रतिभा शाह, आप मेरे साथ ही बैठी थी। रमीला जी, आप भी साथ बैठी थी। एंड अब आपके हस्बैंड्स के नाम मैं भूल चुकी हूँ, भुलक्कड़ है सरिता, क्या करें, वसंत आई थिंक, वसंत। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यार से आप सब मुझे मिले। अच्छा लगता है जब पता चलता है कि कौन से कान कहाँ बैठे इन प्रोग्रामों को इंजॉय करते हैं। तो कीप ऑन लिसनिंग टू लाइका गोल्ड।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई, अगर इनके जरिए पैसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं इंडिया, तो काम तो बहुत आसान है। Your £1 in British sterling can get you up to 127 rupees and 15 paisas today. And कैसे कर सकते हैं आप? Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. यही नहीं, इसके अलावा 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Gold.
4: Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: भी आज दो मैच होने वाले हैं जर्मनी एंड काकाओ के बीच में और दूसरा मैच होने वाला है नीदरलैंड एंड जापान के बीच में, लेकिन देर से शुरू होंगे। पहला मैच शुरू होगा 6 बजे और दूसरा मैच होने वाला है रात को 9 बजे। सो अपडेट हम आपको देते रहेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम में मैच आगे बढ़ेंगे। पर ये बता दूं कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर रेक्लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
5: You think a football coach just teaches how to kick a ball?
6: Nah, a football coach gives you the skills to win in life.
7: I stay focused for 90 minutes.
8: So a 60-minute exam is no sweat. Shh.
9: Job interviews don't scare me.
10: I'm up against 11 players every week.
11: And I'm not just captaining a team.
12: I'm prepping for when I'm running my own company.
13: A coach's influence goes beyond the pitch. That's why Chase Bank has funded over 6,000 grassroots coaching qualifications. Search Chase.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold.
14: Like a Gold.
15: पत्नी प्रीमियर लीग शोज एट राइसली अल्बर्टन ईस्ट एंड साउथ लंदन लोरूम लेस्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194 7।
16: गो बैंग लंदन टीम्स अप फॉर द आतिफ असलम कॉन्सर्ट इन एसोसिएशन विद लाइका रेडियो नेटवर्क। For you to win a 5 gram gold coin, if you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
17: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
18: This June, the FIH Hockey Pro League brings one of sport's greatest rivalries to London.
19: India versus Pakistan, live at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre.
18: High speed, high intensity, absolutely unmissable. Get your tickets now at englandhockey.co.uk.
19: India versus Pakistan, London, 23rd and 26th June. Be there.
17: So India looking to press home that advantage. There's a chance.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भारत भूषण जी की फिल्म से मैंने चुना हुआ गीत आप सब तक पहुंचाया और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरे पास है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन इस वक्त ज़रा हम अपने कमल प्रभाकर जी के पास जाते हैं जो कि क्रिकेट के हमारे संवाददाता हैं और हमें बताने जा रहे हैं कि क्या चल रहा है क्रिकेट के मैदान में।
3: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Like a Gold. Women's Cricket Updates, presented by Kamal Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
4: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
2: राइट भाई, इस वक्त मैच चल रहा है और क्या हाल है वहाँ का वो बताएंगे हमें कमल प्रभाकर जी। इंडिया और पाकिस्तान विमेन के बीच में मैच चल रहा है क्रिकेट का। हेलो कमल जी, कैसे हैं आप?
5: सरिता जी वेलकम, अमेजिंग, इतना एक्साइटिंग टाइम में आप आए हो। इंडिया ने स्कोर किया 170 फॉर 6 इन देयर 20 ओवर। दे डिड स्ट्रगल फर्स्ट बट दे बैटेड वेल एंड गॉट द रन्स। और अभी पाकिस्तान दे वर फाइटिंग वेरी वेरी वेल बट इंडिया ने काफी विकेट्स ले लिए, तो नाउ पाकिस्तान इज 80 फॉर 6 इन 12 ओवर्स।
2: जी,
5: बट द क्राउड इज अमेजिंग, बट दे आर मोर ब्लू शर्ट्स अराउंड द स्टेडियम देन ग्रीन शर्ट्स, बट द एटमॉस्फेयर, the cricket at its best, the skillness of the women, amazing. So everybody's having a fun time. It's like it's so lovely.
2: Very good. You're so lucky you're there.
5: And yes, Sarita, you will have to get to one of the
2: सॉरी आपकी लाइन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। थैंक यू कमल जी, लेटर ऑन आई विल स्पीक टू यू अगेन। थैंक यू। एंड पाकिस्तान नीड्स 89 रन्स नाउ इन 44 बॉल्स। सो आप सुनते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
3: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
4: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
3: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: और सरिता, अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन देने जा रही है कि किशोर कुमार के फैंस खुश हो जाएं और रेडी हो जाएं अगर आप उनके क्रेजी फैंस हैं। तो किशोर कुमार के स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय, इंद्राणी, संजय विद हेनल एंड 515 बैंड, इन सबको एक ही जगह आप देखना चाहते हैं तो बता दूं कि ये सब एक जगह होंगे फ्राइडे 19 जून को एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में। टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk और कॉल 0208-514-5400। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका गोल्ड रेडियो।
3: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Like a Gold.
2: Another beautiful song by Rafi Saab. और ये गाना, I'm sure it this was picturized on Bharat Bhushan. मैंने ये फिल्म देखी है. Yes, याद आ गया मुझे. भारत भूषण जी की आज बर्थ एनिवर्सरी है. 1920 में उनका जन्म हुआ था. एंड 27th जनवरी 1992 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। ही वॉज एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर।

मैं यही चाहती है सरिता कि सभी के प्यार के सपने सभी हमेशा पूरे होते रहें, आपका प्यार कभी भी अधूरा ना रहे। वेल बीवी नंबर वन एंड बरसात की एक रात 1981 की फिल्म से दो बैक टू बैक गाने आपने सुने। ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड द फाइनल आवर। आपको सारे गाने अच्छे लग रहे हैं ये जानकर अच्छा लगता है। सहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारती जी, हंसा वोरा जी, पाके चियांग, उलाश फ्रॉम टोरंटो, विजय गुजरई, अरुणा जी, सहर जी, सलमा मेडस्टोन से, आंटी जी बा, और आप हैं जगतार जी, जगतार सिंह जी, सांगा इन वैंकूवर, भरत गंगाराम जी, जैस्मिन जी ने

0: निर्मलन कीरची मृदु हना विमल विमल रायन राजकुमार जी प्रज्ञा जी कमल प्रभाकर जी हरीश वलंद एंड संध्या भावसर निकज बहुत लंबी लिस्ट है फरजाना जी अर्जुन जी तोची जी अमिता मिसेस शेख एंड आप कौन हैं जी आप हैं एस्ट्रोनॉट पता नहीं अलग सा नाम है विनी विनोद आपका भी बहुत विनी विनोद एंड वरुण जी दिव्या इन हैरो निर्मला जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश पोपट जी मोहम्मद अयूब चौहान साहब आप सभी सुन रहे हैं मैसेजेस आप सभी के मुझे मिल चुके हैं। हाँ मैं आपको चॉइस देना चाहती हूँ दो गीतों में से एक गाने की राइट मुगले आजम के दो गीत हैं मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद आएगा तेरी महफिल में किस्मत आज आजमा के हम भी देखेंगे या फिर प्यार किया तो डरना क्या इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं ए तेरी महफिल में किस्मत और बी प्यार किया तो डरना क्या तो जो भी गीत आपको सुनना है जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी अगर इनके जरिए पैसे आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो काम तो बहुत आसान है एक पाउंड अगर आज आप भेजना चाहते हैं तो आपको मिलेंगे 127 रुपीस एंड 15 पैसेस और आप योनो ऐप के जरिए या ब्रांच में जाकर पैसे अगर ट्रांसफर कराना चाहते हैं बिफोर एंड ऑफ जून तो आपका नाम जो है आपको विन कर सकते हैं अरे क्या मेरे कान में बहुत सूं हो रही है राइट एंड इफ़ यू ट्रांसफर बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स ऑल्सो अ 1 gram gold coin every week when sending over 2000 pounds. Terms and conditions apply.
1: Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: राइट आज मैच होने वाला है जर्मनी एंड कुराकियो के बीच में एंड ये होगा शाम 6 बजे शुरू एंड 6 बजे शुरू हो चुका है सरिता एंड नेदरलैंड एंड जापान के बीच में जो मैच होना है वो आज रात 9 बजे शुरू होगा सो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
0: जी हाँ इनका एक और मैसेज भी है कि डोंट फॉरगेट यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद आवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका
1: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव
4: You think a football coach just teaches how to kick a ball?
5: Nah, a football coach gives you the skills to win in life.
6: I stay focused for 90 minutes.
7: So a 60-minute exam is no Swift. Shh.
8: Job interviews don't scare me.
9: No! I'm up against 11 players every week.
10: And I'm not just captaining a team.
11: I'm prepping for when I'm running my own company.
12: A coach's influence goes beyond the pitch. That's why Chase Bank has funded over 6,000 grassroots coaching qualifications. Search Chase.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics.
3: Like a gold.
13: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car. Now in their 20th year, they're on average 11 minutes away. So help is never far. If only they could make finding a good driving song simpler. No. No. Oh, definitely not. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com.
14: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
15: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
16: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
15: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
16: And you didn't pay those massive roaming charges?
15: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
17: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
18: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
19: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
18: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
19: गारंटेड
18: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
19: फोन 0208574-8410।
18: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
20: Location, location, location.
21: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
20: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
21: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
20: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
21: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
20: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
21: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
20: High appreciation.
21: In Dubai.
22: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
23: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
22: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
23: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
22: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
23: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
22: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
24: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no labh. Aap pavitra yatra ma jodao apna parivar sathe. Jyan madshe shanti, bhakti ane anand. Ane sathe Eiffel Tower, Seine River Cruise ane Paris City Tour no anand mano. Departure 5 September na Mantra Holidays. Call karo 0203-773-6333. Mantra Holidays. What's your travel mantra? The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
25: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
24: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
25: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
26: London, good news! आपका favorite iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
27: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
28: Sonatours.co.uk. This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sonatours. Call 0208-951-0111.
29: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
1: of the week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: खोले।
1: अरे भाई खिड़की खोल दीजिए ना इनके लिए। बहुत प्यारा गीत था और आप सब ने इंजॉय भी किया और मुझे वोट्स भी मिल गए हैं जो गीत आप सुनना चाहते हैं मुगले आजम से। सो वो गीत आ रहा है आपके लिए नाउ।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: So, ज्यादातर वोट इस कव्वाली को मिले हैं।

0: भाई इस कवाली को शामिल करने का एक मकसद ये भी था कि आज के आसिफ साहब की भी बर्थ एनिवर्सरी है। 14 जून 1922 में उनका जन्म हुआ था एंड ही वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर एंड हु इज नोन फॉर द एपिक फिल्म मुगले आजम, जिसका गीत आप सुन रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले 1945 में फिल्म बनाई थी फूल, डिन डू वेरी वेल ऑन बॉक्स ऑफिस इन 1944 एंड इन्होंने फिर तभी मुगले आजम लिखना शुरू कर दिया था लेकिन नहीं बन पाई थी तब। और इसमें उन्होंने चंद्र मोहन और लीड रोल में नरगिस जी को साइन किया था लेकिन ये फिल्म उनके साथ नहीं बनी और उसके बाद 1951 में इन्होंने इस पर काम करना दोबारा से शुरू किया एंड दिलीप कुमार एंड मधुबाला ने इस फिल्म में काम किया। रेस्ट इज द हिस्ट्री, आप सभी जानते हैं कि कितनी चली थी ये फिल्म। सो आज हमने इसके जरिए हमने याद किया कि आसिफ साहब को भी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: By the much awaited hockey FIH hockey pro league matches between India and Pakistan take place in London on 23rd of June till 26th of June and they take place at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre. Get your tickets from englandhockey.co.uk supported by Leica Radio Network. और भी एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है और वो इन्फॉर्मेशन क्या है भी? Leica Radio Network team up with Tariq Halal for the opening of their new Rainers Lane branch on Wednesday 17th June located at 297 Rainers Lane, Pinner HA5 5EJ and the first 100 customers will have the chance to claim a golden ticket on a first come first served basis. Spend £1 and receive £50 worth of food items. Terms and conditions apply and Leica Radio Network will also be broadcasting live from there. So be there at 10 a.m. and we will be there between 10 and 1.
3: Leica. Song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: भाई, इस पंजाबी के गीत को शामिल करने की एक वजह यह है कि हमने सुरेंद्र कौर जी को याद किया। दो इस गीत में दो आवाज़ें थी, सुरेंद्र कौर एंड प्रकाश कौर जी की, दोनों बहनें बहुत छाई हुई थी एक ज़माने में। और आज सुरेंद्र कौर जी की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए मैंने ये गीत उनको डेडिकेट किया। एंड आज ही सुशांत सिंह राजपूत की भी डेथ एनिवर्सरी है, पर क्योंकि 2000 के बाद उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया था तो मैं उनका कोई गीत नहीं शामिल कर पाई। कि आसिफ साहब को याद किया, भरत भूषण जी को याद किया, शेखर सुमन इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, एंड जुबिन नौटियाल का भी आज ही जन्मदिन है, किरण खैर जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, एंड वी मधुसूदन रॉय जो कि एक प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर हैं डायरेक्टर है, उनका भी आज ही बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है, तो उनको भी हमने याद किया। इसी के साथ मैं सरिता अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह आपके लिए विंटेज गोल्ड लेकर, और दूसरी तरफ लाइका रेडियो पर आ रही हैं हमारी प्यारी सी महसा, उनका साथ दीजिए। मैं मिल लूँगी, बाय नेक्स्ट वीक।
1: दिस इज लाइका गोल्ड। Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car, because they sort out any outstanding finance for you. Just bring along your final settlement agreement. If only they could make parallel parking simpler. To the right a bit, mate. Yeah, back a bit more. Oh, no, too far. We Buy Any Car, selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
2: तूने क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
3: गुरु,
4: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
2: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
5: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड। Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
7: It's India versus Pakistan and this is India's lineup.
8: इस जून FIH Hockey Pro League लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में। India versus Pakistan live at Lee Valley Hockey and Tennis Center. High speed action, high intensity moments, बिल्कुल unmissable. अपने टिकट्स अभी बुक करें at englandhockey.co.uk. India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
7: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
9: Hi, hello, get show. Who get the weather? Ash, who take go? Arara, public demand. Hariti aayi nahi chhu. London baro nau natak line. But me Premier League at like PPL. Yes, from 3rd July till 12th of July. Wow, and this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo.
8: Patni Premier League shows at Risley, Alberton, East and South London, Lorum, Leicester. For more information, call Deepa on 0794756194.
10: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026, 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full-board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956154846.
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट रागासन.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
13: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
14: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
15: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: कैन नेवर गेट इनफ ऑफ बरसात साउंडट्रैक. अब सुनते हैं नौशाद का संगीत, आवाज होगी मुकेश की.
1: Vintage Gold with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: Live richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam live at the O2 Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
1: Father son no bond jitlo special che itli j special film aavi rahi che.
2: Uncle tame pehla thi aawaz chho.
3: Aawaz etle keva.
4: Dharma Productions presents Zindagi Once More.
3: मारो बाप बनवानी कोशिश करत तू बुद्धि वेची आवे छे तू अरे जिंदगी एवी मौज थी जीवजे कि जिंदगी खुद तने आवी ना पूछे
4: आ फादर्स डे फील द इमोशंस लव एंड फैमिली मोमेंट्स विद जिंदगी वंस मोर इन सिनेमास ऑन 19 जून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
3: तो थई जाए जिंदगी वंस मोर
5: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे
4: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
5: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
4: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
5: दर्शन पण अने यूरोप पण
4: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर साथे
5: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स
4: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
6: लाइक अ गोल लंदन का नंबर 1 एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर डीएबी डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे
7: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Leica Extra stream it now and be a part of the conversation

0: दीवाना।
1: सेलेस महमूद की आवाज़, फिल्म का नाम था यास्मीन फ्रॉम 1955। नाउ अ सॉन्ग दैट आई फाइंड सो अंडररेटेड बट सो गुड, बट अगेन इट्स बिकॉज द फुल साउंडट्रैक वाज सो ह्यूज, सम ग्रेट सॉन्ग्स इन देयर। मुकेश के गाने कमाल के थे, बट आई थिंक दिस वन बाय लता मंगेशकर वाज वंडरफुल एंड अंडररेटेड। फिल्म का नाम बादल, शंकर जयकिशन का संगीत।
2: Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: Leica Gold.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 0208574 8410।
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
6: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
7: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
8: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
9: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे?
10: उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
8: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
11: दुल्हन के लिए मेकअप।
8: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
12: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
13: Location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
14: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danio. Prime location,
13: high appreciation
14: in Dubai.
15: The future belongs to creators. At RoboThink summer camps, children build robots, learn coding and future ready skills. Leica listeners get 10% off full week bookings with code Leica10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/Leica.
16: Up next, non-stop classics on Gold Nights on Leica Gold. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 03963 5757। Greens by Daniel, prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai।
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
7: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: ફાધર સન નો બોન્ડ જેટલો સ્પેશિયલ છે એટલી જ સ્પેશિયલ ફિલ્મ આવી રહી છે.
9: અંકલ તમે પહેલાથી આવા જ છો.
10: આવા એટલે કેવા?
8: ધર્મા પ્રોડક્શન્સ પ્રેઝન્ટ્સ જિંદગી વન્સ મોર.
10: મારો બાપ બનવાની કોશિશ કરે તો બુદ્ધિ વેચી આવે છે તું? અરે જિંદગી એવી મોજથી જીવજે કે જિંદગી ખુદ તને આવીને પૂછે.
8: આ ફાધર્સ ડે ફીલ ધી ઇમોશન્સ, લવ એન્ડ ફેમિલી મોમેન્ટ્સ વિથ જિંદગી વન્સ મોર ઇન સિનેમાઝ ઓન 19 જૂન. ફોર મોર ઇન્ફોર્મેશન વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયા ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ.
10: સો થઈ જાય जिंदगी वंस मोर एक्ट।
11: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
12: This is huge.
11: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
12: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
11: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
12: Doors open at 10 AM sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
11: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs apply।
0: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर

0: ना जला, मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करो ले तेरे पाँव परो, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू।
1: थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम।
0: हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

0: नायका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।
1: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम,
2: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट्स।
1: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइव Car Radio,
3: the voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
4: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
3: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
4: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
6: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
7: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
6: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
8: Dulhan ke liye makeup.
6: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
0: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.